भाद्र 5 गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार सम्पन्न गराउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। साधारण सभाका प्रस्ताव तथा छलफलका विषयहरू आर्थिक वर्ष 2082-83 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत तथा छलफल, आर्थिक वर्ष 2082-83 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत तथा अनुमोदन, आर्थिक वर्ष 2083-84 को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत तथा छलफल, संस्थाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बारे जानकारी तथा छलफल, लेखा परीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा, संचालक समितिको कार्य सम्पादन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल, नयाँ संचालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन, निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया तथा निर्णयहरू, वार्षिक साधारण सभा हुने मिति 2083 असोज 8 गते, स्थान भिनप 9944-23-63 गते, स्थान सैलुङ 3 गाउँपालिका आसपास, समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म, सम्पर्क नम्बर 97-42-42-75-17, मिति 2083 साल असोज 11 गते, स्थान सैलुङ 6 ढुङ्गे बाखोर, समय बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म, सम्पर्क नम्बर 98-44-23-63-23, मिति 2083 साल असोज 11 गते, स्थान सैलुङ 8 कालापानी, समय दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म, सम्पर्क नम्बर 97-42-42-75-17, मिति 2083 साल असोज 12 गते, स्थान सैलुङ 8 जोर मनगाउँ, समय बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म, सम्पर्क नम्बर 97-42-42-75-17, मिति 2083 साल असोज 12 गते, स्थान सैलुङ 8 सरन्थली, समय दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म, सम्पर्क नम्बर 97-42-42-75-17, मिति 2083 साल असोज 13 गते, स्थान सैलुङ 8 पाँडेखानी, समय बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म, सम्पर्क नम्बर 97-42-42-75-17, मिति 2083 साल असोज 13 गते, स्थान सैलुङ 8 भैंसे बजार, समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म, 97-42-42-75-17, मिति 2083 साल असोज 15 गते, स्थान मेलुङ 1 पौटी सवाहल, समय 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म, सम्पर्क नम्बर 98-44-30-77-72, मिति 2083 साल असोज 15 गते, स्थान सैलुङ 6 भित्रे भन्ज्याङ, समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म, सम्पर्क नम्बर 98-44-23-63-23, मिति 2083 साल असोज 17 गते, स्थान सैलुङ 6 महिला भवन, समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म, सम्पर्क नम्बर 98-44-23-63-23, मिति 2083 साल असोज 18 गते, स्थान सैलुङ 7 वडा कार्यालय, समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म, सम्पर्क नम्बर 98-44-68-24, मिति 2083 साल असोज 21 गते, स्थान सैलुङ 6 संस्थाको प्राङ्गण, समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म, सम्पर्क नम्बर 98-44-23-63-23। साधारण सभामा उपस्थित चेयर सदस्यहरूलाई कर बाहेक रू 300 खाजा खर्च उपलब्ध गराइनेछ। 2083 असार मसान्तसम्म नियमित बचत गरेको ऋणको भाका ननागेका चेयर सदस्यहरूलाई मात्र खाजा खर्च उपलब्ध गराइनेछ।

अन्य जानकारीका लागि 97 48 28 77 55 98 44 23 63 23 98 45 75 88 88 माथि उल्लेखित नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। रमेश बहादुर सुवेदी व्यवस्थापक। श्रमजीवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सैलुङ गाउँपालिका 6 फस्कु दोलखा।